मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओह मनुख ही ये गल समझ सकता है जिस नूं वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना। शमी भाई जी
1: जी
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना,

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे
0: जी,
1: तमा मैं थोड़ा ही लेना चाहता सी पर ज्यादा लै गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के

हाय वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी चन चंद्रा जदों भी चढ़ आवे हाय वे मेरी जान सुख दी तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां तकदियां रहंदियां ने रामा नित तेरियां है रामा नित तेरियां रो रो के पीछे गईयां अखां दोवें मेरियां वे अखां दोवें मेरियां गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा गल सुन दिल तारा तेनू कहना नी दुबारा हुण होर।

सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरे हड्डा नु नित खावे, हाय वे मेरी हाड़ा वे मेरी जान सुख दी।

जड़ तो पुटते पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा

अपने वीरां नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए।

0: एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड चली अज माए, छड चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, जिथे मेरे जोगी थां नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी तापनी बनी मां नहीं, मेरी तापनी बनी मां नहीं। बेगाने च पोगल नू भेज के माए, बेगाने च पोगल नू भेज के माए, कीता अखां तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोले नी, मैनू पाने दी डोले नी। शुक्रिया साथू, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक बड़े पिंड कोकड़ पिंड नाल संबंध रखते ने, ते बहुत लंबे समय तो वो बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे वो इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल वो अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ उह कविता दे विच व्यक्त करदे ने, ते उह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने, उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच उत्ते निघा स्वागत है।
2: मैं तारा सिंह तारा एक गीत पेश करन लगा। गीत है झूठे वादे छूणा। गीत दे बोल ने जिंद वादियां च डुब गई जिसम तरी जांदा है, वो डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जदों बंदा डुब जांदा आ उहदी जान निकल जांदी आ, ते जिहड़ी मुरदा शरीर आ उत्ते तरदा पाणी दे। इस तरह साडा आवाम मुरदा आवाम जिद्दां हुंदा तुरिया फिरदा है। सो मेरा मतलब जिहड़ा जिस्म शब्द है वह आवाम लई है।

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डुब गई, जिंद वादिया चे डुब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: जी
1: फिर भी वो धरने मुजहरे करते रहेंगे है नौकरियां लैण लई।
0: हाँ
1: इहदा
0: जी
1: मतलब ये खेतर सौखा नहीं हैगा जी इधर आउणा।
0: हाँ जी, ये खेतर सौखा भी जरूर है ते थोड़ा रस्ता भी घट है इहदा। असीं
1: हाँ
0: कहीए
1: जी
0: कि तय करन दे लई इहदे लई बहुत ज्यादा लंबे साल नहीं लगदे हैगे सानू।
1: हाँ जी
0: रस्ता भी घट है ते
1: फिर
0: उहो
1: इधर
0: भी
1: कट क्यों आउंदे ने नौजवान।
0: ये चीज भी हैगा। घट ता नहीं कह सकते बट कंपैरेटिवली जेड़े बच्चे करदे हैं आईटीआई उन्हां नू अवेयरनेस नहीं हुंदी कि केड़ियां पोस्टां निकल गईयां ने।
1: अच्छा
0: असीं
1: जी
0: इहनां लई अप्लाई भी कर दिंदे ने जे बच्चे पोस्टां,
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: उह बच्चे तैयारी नहीं करदे टेस्ट दी
1: अच्छा
0: ते
1: जी
0: जिहदे नाल उह पिछे रह जांदे ने। फिर उहदे करके ना कोई जिद्दां हो नहीं जांदा कि नहीं आईटीआई वाला तां उह देख लैंदे ने लोक, देखो देख के आईटीआई फलाने कीती सीगी ते उह फ्री है
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: हुण असीं आईटीआई करांगे तां असीं भी फ्री हो जाणा है। इस करके आईटीआई इस करके भी बच्चे काफी सोच लैंदे आ कि हो सकदा है कि भी है ना 10 पढ़े लिखे नूं या 12 पढ़े लिखे तो बाद कोई कोर्स करके किदां नौकरी मिल सकदी है, जदों के है ना बीएड करे हुए बैठे वेले बैठे हैं।
1: अच्छा जी
0: ये भी थोड़ी मेंटेलिटी साडी हो सकदी है बट ये चीज नूं साडे दिमाग च नहीं आना चाहिए क्योंकि हरेक स्ट्रीम दा एक वक्खरा स्कोप है। टीचिंग
1: हाँ
0: है
1: जी हाँ जी
0: ओहदे विच बहुत कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा विच लोग जिहड़े ने टीचिंग जिहड़ा प्रोफेशन है ओहदे विच आउणा चाहुंदे ने।
1: ठीक है
0: कंपैरेटिवली इहदे विच बहुत घट है क्योंकि ज्यादा बच्चे सोचदे नहीं है कि इन्ना जल्दी असीं इंप्लॉयबल हो जाएंगे या फिर उन्हां नूं अवेयरनेस भी घट रह जाती है क्योंकि देखो आईटीआई सेक्टर दे विच ज्यादातर साडे जिहड़ा रूरल या कह लिए एरिया दे लोग जिहड़े हैं ज्यादा बच्चे इहदे विच आंदे ने।
1: हाँ जी
0: ते उस तो बाद जिहड़े बच्चे हैं उन्हां नूं इन्नी रूरल एरियाज च तुहानूं भी पता है कि इन्ना इंटरनेट फैसिलिटी कह लो इहो जी ही हुंदी है कि उन्हां नूं नहीं अवेयरनेस हो जांदी हो पांदी हैगी भी केड़ियां पोस्टां ने या
1: हाँ
0: असीं
1: जी
0: केड़ी कंपनियां च जा सकदे हां। वड्डियां कंपनियां ने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक दी कोई कंपनी है, ठीक है, तां उहदे विच भी बड़ा इक रह जांदा है। कुछ इक होर चीज भी आ जांदी है
1: हाँ
0: जिदा
1: जी
0: आईटीआई सेक्टर है मोस्टली ज्यादातर बच्चे जिहड़े हैं आईटीआई कर लेंदे अपना खुद दा छोटा मोटा काम शुरू कर लेंदे हैं
1: अच्छा जी
0: ते उन्हां नूं ना एक बैरियर जा हो जांदा कि असीं किसी कंपनी च जाके काम करांगे या
1: हाँ
0: सानूं ओहदे
1: जी
0: लई फिर सानूं अपना पिंड छड्डना पऊगा या फिर सानूं ओहदे लई अपना जिला छड्डना पऊगा या फिर ओ ए पंजाब छड्डना पऊगा क्योंकि काफी पंजाब तो बाहर भी इस दियां जिहड़ियां सीट्स ने अवेलेबल काफी डिमांड हैगी है जिहड़ी,
1: अच्छा जी
0: तो बच्चे अपने घरां नूं छड्ड के बाहर नहीं जाना चाहते तो वो इस करके अपना इधर ही देखते हैं कि असीं खुद दा काम शुरू कर
1: अच्छा
0: लईए।
1: एक गल दसो भी जिहड़े लड़कियां दे लई इस खेत्र दे विच की भविख हैगा उन्हां लई किस तरह दे कोर्स ने। कोई लड़कियां लई विशेष कोर्स ने जां यही कोर्स उन्हां लई हैगे ने।
0: नहीं लड़कियां दे लई विशेष कोर्स तां आपां ये कह सकदे हां कि जिवें इत्थे सीविंग दा हो गया, सीविंग कटिंग दे कोर्सेज हो जांदे ने
1: अच्छा जी
0: काफी। हां जी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे विच काफी जांदियां ने कुड़ियां
1: अच्छा
0: ते
1: जी
0: एक स्टेनोग्राफी इंग्लिश जिहड़ा ट्रेड है ओहदे विच ये भी एक कॉमन कोर्स असीं कह सकदे हां
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: कुड़ियां कर सकदियां ने क्योंकि इहदे विच काफी बच्चे जांदे हैं, गर्ल्स भी ज्यादा मात्रा विच जांदियां ने,
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है। बाकी जिहड़े कोई इदां दा बैरियर नहीं है जिदां मोटर मैकेनिक हो गया इदां दे कोर्सेज ज्यादातर मेल्स ज्वाइन करदे हैं, बॉयज ज्वाइन करदे हैं,
1: अच्छा जी
0: बट जिदां सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी
0: इदां दे काम हैगे हैं जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने।
1: काफी
0: तां
1: वधिया कुड़ियां लई खेत्र वधिया हैगा।
0: हां जी हां जी बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसनी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे।
0: इस खेत्र दे विच ये है कि देखो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां कि जिहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाना चाहुंदे ने, देखो इक चीज दा जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी
0: अपना खुद दा रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओहदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी
0: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर के विच जा